0: दिल लगी लगी लगी ओ दिल लगी दिल लगी लगी लगी ओ दिल
1: பஞ்சாபி பாடல்கள்
2: You're listening to Punjabi Hits on Media Kavoli 968.

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।